0: मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, जिसका हम सभी को इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। सवाल होता है कि यार किस घड़ी की बात कर रहा है भाई साहब? उसी घड़ी की जिसका पूरे हफ्ते हमें इंतजार होता है, संडे वाली नहीं, सैटरडे वाली मॉर्निंग की। क्योंकि जो संडे का मजा है ना, वो सैटरडे में ही आता है। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वगैरह सब कुछ सैटरडे में होती है, और वीकेंड के सारे प्लान हम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं शनिवार के दिन। वीकेंड का वार शनिवार, इस लफ्ज़ के अंदर ना तो कितना सुकून है ना, वो मंडे वाली भागदौड़ नहीं है, टेंशन नहीं है, मंगलवार फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बुधवार वाला रोना नहीं है, बस शनिवार वाला सुकूनपन है आज इस शनिवार के दिन। तो इसी सुकून को और भी आगे लेकर जाएंगे, और बहुत सारी बातें, मुलाकातें और हसीन नगमों का साथ भी होगा, क्योंकि सैटरडे यानी कि रिलैक्स वाला दिन होता है। तो अपने शो में बस रिलैक्स वाली बातें होती है, ना गहरी, ना कुछ दिमाग को टेंशन देने वाली, बस सुकून का एहसास करवाने वाली। सो गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, वीकेंड का वार में शो का आगाज करते हैं। और भी बहुत सारी बातें लेकर आऊंगा मैं कुछ देर में, अभी तो अपनी मुलाकात का सफर शुरू हुआ है, बहुत कुछ बाकी है अभी।
1: तार उघड़ चुताई, तार उघड़।
2: अरे पर नाइना उघड़ता है।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक गेम खेलने का भी वक्त हो चुका है जिसमें ना तो बढ़िया से गिफ्ट जीतने का आपको मौका देता हूँ मैं, यानी कि आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान। और आज कॉन्टेस्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और आप मुझे उसका जवाब बताना और गिफ्ट जीतना। तो सवाल कुछ ऐसा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले सूर्योदय होता है, यानी कि सूरज निकलता है। ऐसा भारत का कौन सा राज्य है सबसे पहले वहां पर सूरज देवता के दर्शन होते हैं, बताइए मुझे। डीएम कीजिएगा इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, जो सबसे पहले जवाब देगा उसे गिफ्ट मिलने वाला है। तो जल्दी करें और बताएं कि भारत में किस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता है और जवाब दे गिफ्ट जीते। और सुनते रहे
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: मेंटल हेल्थ ठीक रखिए भाई, और ओवर थिंकिंग को भी कम रखिए। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। तो इसी पर बात करने के लिए अपने साथ है डॉक्टर मानसिक रजगावकर मैम, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम, ओवर थिंकिंग पर हम बात कर रहे हैं, तो ये कम करने के लिए कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी हैबिट्स बताइए।
1: सबसे पहली हैबिट तो है टाइम पर सोना और टाइम पर जगना, है ना, वही होना चाहिए। वो हमारे हाथ में है, लेकिन लाइक वी डिस्कस्ड कि हम करते नहीं हैं जो सिंपल चीज़ें हैं। तो सबसे पहला टिप है कि आपका स्लीपिंग टाइम फिक्स चाहिए एंड वेकअप टाइम फिक्स चाहिए, एक स्केड्यूल बनना चाहिए। सेकेंड चीज़ है हमारी फिजिकल मूवमेंट रोज़ होनी चाहिए। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, है ना, थोड़ा ग्राउंड एक्सरसाइज ही कर लीजिए, भले ही 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, लेकिन वो रेगुलरिटी से होना चाहिए। फिर डिजिटल टाइम जो है, एक फिक्स्ड फ्री डिजिटल टाइम या डिजिटल फ्री जोन, ऐसा कुछ हमको क्रिएट करना होगा लाइफ में, कि जैसे मान लीजिए रात में 10 से 12 या 9 से 11 या जो भी है, आप बिल्कुल फ़ोन को टच नहीं करेंगे, और 10 मिनट माइंडफुल रहना है, एक जगह बैठ के आंखें बंद करके बस सोचना है कि आज दिन भर में हमने क्या क्या किया और क्या क्या सही हो सकता था और बेहतर हो सकता था।
0: सो मैम ने जो चीजें बताई है वो फॉलो कीजिएगा, और उससे भी आपकी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। सो ज्यादा सोचिए मत, और भी सोचने के ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहे होंगे, वो माइंड में सवाल क्या है बताइए, पूछिए हमसे 9359320080 इस नंबर पर।
2: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एंड फाइव, छत्रपति संभाजीनगर।

फरमाइश फरमाइश और फरमाइश, आपकी फरमाइश है सराखों पर। यू आर लिस्निंग MGM 90.8 FM। आज गाने की फरमाइश आई है प्रेम

और ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए ना तो ये गाना बहुत काम की चीज है, ना मुंह छुपा के जियो। चलो फिर प्रेम जी की फरमाइश पर ये मोटिवेटेड और प्रेम भरा गाना भी हम एंजॉय करते हैं। आपकी भी दोस्तों कुछ फरमाइश होगी तो हम तक पहुंचा सकते हो 9359320080 इट्स व्हाट्सएप नंबर पर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: गणपति बापा जब आते हैं ना तो खुशियों के साथ रोजगार भी लेकर आते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि गणपति बापा का तो आगमन हो चुका है, फिलहाल हम गणेश उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर तरफ बस एक बात की चर्चाएं होती है और हर कोई कहता है, मैंने भी मेरे दोस्तों को कहा है कि यार भाई मोदक खाने मुझे, और मोदक तो हर कोई खिलाता है, प्रसाद होता है। एंड यू नो व्हाट, इस साल ना तो बापा के मोदक की वजह से ना होममेड मोदक को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और ऐसे जो होममेड मोदक बनाने वाले लेडीज है ना त्यांना एक रोजगार सुद्धा या मोदकामुळे मिळालेला आहे। आणि यावर्षी असं बघण्यात आलेलं आहे की सर्वात जास्त पसंदी ही होममेड मोदकाची आहे। सो जो होममेड मोदक बनाते अपने घर से काम करते हैं लेडीज, तो उनको इस गणेश उत्सव एक बहुत अच्छा बिजनेस मिला है। उनके जो मोदक है बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तकरीबन 35 रुपए प्रति नग से ऐसे ये मोदक बिक रहे हैं, एक मोदक जो बड़े साइज में होता है और स्पेशली जो ओरिजिनल मोदक होता है ना उसके मैं बात कर रहा हूँ, उकड़ी सी मोदक। और इसी के साथ मार्केट में ना तो अलग अलग वैरायटी के मोदक आए हुए हैं, जैसे कि उकड़ी के मोदक तो हर किसी को पसंद है, इसी के साथ मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, डार्क चॉकलेट ऐसे फ्लेवर के भी मोदक मार्केट में दिखाई देते हैं। आणि यासोबतच यावर्षी ना तर थोडे नीचे मोदकांना सुद्धा खूप मागणी आहे। हे सर्व मोदक आहेत ते होममेड मोदक आहेत, सो इसलिए कहा ना कि गणपती बाप्पा जब आते हैं तो खुशियों के साथ रोजगार भी लेकर आते हैं। क्या बात है यार, अब इतनी मोदक की बात हो ही रही है तो मैं क्या कहता हूँ, क्या है ना, मैंने मोदक नहीं खाए अब तक, ओरिजिनल वाले जो उकड़ी चास्ता ना थे, आप मुझे खिला सकते हो मोदक? देखो मैं खुद से नहीं मांग रहा हूँ लेकिन बस बता रहा हूँ कि मुझे भी मोदक खाना है, तो कब आऊँ मैं आपके घर, बताइए बताइए। बाकी तो सुनते रहिए आरजे अदनान के साथ।
1: Only on MGM 90.8.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: खबर।
1: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है
2: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
1: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM,
3: साथ है तो बात है।

असं म्हणतात की एकच डिपार्टमेंट आहे जे खूप इमानदारीने काम करते. आता विचार कराल की ते डिपार्टमेंट कोणतं, तर ते ट्रॅफिक वाला, मतलब वही डिपार्टमेंट जिनकी गाडी आती है और आपने अगर नो पार्किंग में गाडी लगाए तो बिंदास आपकी गाडी उठाकर लेकर जाती है, उसके बाद आपको फाइन वगैरह भरना पड़ता है. ये कुछ पूरी प्रोसेस है और इनका काम भाई साहब इतना फास्ट होता है ना, आपको लगता होगा कि भाई ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन यही तो असली गेम शुरू होता है भाई. और ऐसी बात सामने आई है अपने शहर में भी, क्योंकि जो लोग गाड़ी उठाते हैं ना, और ये करते क्या है, अगर आपकी गाड़ी उठाए ना, कहते कि आपको 1,000 का फाइन भरना पड़ेगा, फिर आपकी गाड़ी छूटेगी. फिर बाद में शुरू होता है असली गेम, साइड में आते हैं और कहते हैं कि 250 रुपए दीजिए, 500 रुपए दीजिए, आपकी गाड़ी अभी मैं छोड़ देता हूँ. तो कुछ इस तरीके से पूरा गेम शुरू है. एंड आपको क्या लगता है कि यार ये चीज ऊपर वाले तक पता नहीं होगी क्या? पता सबको होता है, क्योंकि एक ऑफिसर बैठा होता है सामने, तो बात कुछ ऐसे कि इसमें से कट उसका भी निकलता ही होगा ना, तभी जाकर इतना सब कुछ ये सेटलमेंट हो रहा है. अब ये सेटलमेंट कैसे शुरू होती है? 500 रुपए से, बाकी फिर वो मोल भाव करके आपकी गाड़ी छूट ही जाती है. सो कौन कहता है कि भाई ईमानदारी से लोग काम करते हैं, सब कुछ फ्रॉड चल रहा है. और हाँ, इतनी नो पार्किंग में कार्रवाई करने की इनको इच्छा है ना, तो पहले शहर में पार्किंग की व्यवस्था बनाओ, उसके बाद फिर ऐसी कार्रवाई करे तो मान लेते यार, पार्किंग होने के बावजूद भी लोग रास्तों पर गाड़ी खड़े करते हैं, तो पार्किंग नहीं है. और बाय द वे, नो पार्किंग से गाड़ी उठाने के लिए गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है. वो कौन से है पता है? बताऊंगा मैं आपको, लेकिन कुछ ही देर के बाद. तब तक के लिए आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है चेक कीजिएगा एंड सुनते रहिएगा. Only on MGM 90.8 FM.

0: हो, पार्किंग में अगर आपकी गाड़ी है तो देखते देखते आपकी गाड़ी सड़क से ट्रक में आ जाएगी। तो बात कुछ ऐसी है कि ऐसा शहर में हो रहा है और ये जो काम करते हैं ना इतने ईमानदारी से काम करते हैं, ऐसा हमें लगता है, कितने फास्ट काम करते हैं। नो पार्किंग में अगर आपकी गाड़ी है और गाड़ी उठाने वाला ट्रक आ गया है तो डायरेक्टली आपकी टू व्हीलर उठा नहीं सकता, उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। पहला रूल क्या है, अगर नो पार्किंग में आपकी गाड़ी है तो उसको उठाने से पहले वहां पर जो लोग काम करते हैं उसका प्रॉपर वीडियो शूट करना कंपलसरी है, और उससे भी पहले एक बार वार्निंग देना कंपलसरी है लाउड स्पीकर के जरिए कि इस एरिया में जो भी गाड़ियां खड़ी है नो पार्किंग में वो वहां से निकाल दीजिएगा वरना हम गाड़ी उठाकर लेकर जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट रूल है। और क्या होता है, अगर हम किसी काम में हो अपनी गाड़ी वहां जहां पार्क किए थे वहां पर दिखाई नहीं दी तो इंसान घबरा जाता है और उसे लगता है कि भाई मेरी गाड़ी महानगर पालिका वाले उठाकर ले गए या चोरी हो गई। तो इस वजह से सेकेंड रूल है, जिस जगह से आप गाड़ी उठा रहे हो वहां पर आपको लिखना चाहिए कि आपकी गाड़ी प्रशासन ने उठाई है, आप इस जगह से वो कलेक्ट कर सकते हो। बट ये रूल भी कोई फॉलो नहीं करता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और रेगुलेशन है लेकिन ये फॉलो कोई भी नहीं करता। बिंदास तो एक ट्रक आता है गाड़ी उठाकर लेकर जाता है। सो कुछ ऐसा पूरा गोलमाल है भाई, सब कुछ गोलमाल है, चल रहा है। खैर, बी सेफ एंड स्टे ट्यून।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: यूपीआई पेमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं भाई, पता तो चल ही गया होगा। और तब से लेकर अब तक अलग अलग सवाल माइंड में है कि यार फिर अब हमने यूपीआई से पेमेंट की तो हमको चार्ज पे करना पड़ेगा, और कुछ भी हो जाए भाई अपन अपना पैसा एक्स्ट्रा क्यों देंगे, और बहुत सारे ऐसे मिथ्स थे और अलग अलग माइंड में सवाल आते हैं। तो भाई साहब देखो, क्लियर बात बता दूँ, पी टू पी एकदम फ्री रहेगा, यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन एकदम फ्री रहने वाला है। जैसे कि मैंने अगर मेरे किसी दोस्त को पैसे पे किया, चाहे फिर 500 रुपये हो, 1000 हो, 5000 हो, 10000 हो, तो फ्री में वो पैसा पे होने वाला है, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ये हो गया पर्सन टू पर्सन। हाँ, अगर हमने यानी कि मैंने किसी दुकानदार को कोई पेमेंट किया, मर्चेंट को पेमेंट किया, यानी कि पी टू एम पर्सन टू मर्चेंट, तब जाके वो चार्जेस लगने वाले हैं। तो ये बात क्लियर रखिएगा कि हमें पैसे पे नहीं करना है, उस शॉपकीपर को, उस मर्चेंट को फीस पे करना पड़ेगी। म्हणजे तुम्ही कोणत्या दुकानात जाऊन 500 पेमेंट करा किंवा 5000 करा, तुमची पेमेंट ही एकदम फ्री मध्ये होणार आहे, त्याच्यावर कोणते चार्जेस नाही आहे। तो सवाल ये भी होता है कि एक्झॅक्टली चार्जेस कितने पे करना पड़ेगा शॉपकीपर्स को, और अगर हमने सर्टन अमाउंट उनके अकाउंट में सेंड की तो उन तक कितना पहुंचेगा और कितना चार्ज कटेगा। तो यार वो कुछ ऐसा है, वो बताऊंगा मैं कैसा है, बट कुछ ही देर में। तब तक स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: यूपीआई पेमेंट में क्या कुछ चल रहा है ये हम सभी को पता है ही। So, देखो यार सिंपल है कि P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन पेमेंट अगर आपने की तो आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है, लेकिन पर्सन टू मर्चेंट यानी कि हमने किसी शॉपकीपर को अकाउंट में पैसे पे किए, कुछ वहाँ से सामान खरीदा, तब वो चार्जेस लगेंगे। और चार्ज कब लगेंगे? 2000 के ऊपर के शॉपिंग के ऊपर 0.4% चार्जेस ये पे करना पड़ेगा शॉपकीपर्स को। अब सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जर तुम्हें कोणत्या दुकानदाराला 5000 पेमेंट केलं तर त्या दुकानदाराला 0.4% म्हणजे 20 रुपये चार्ज लागणार आहे आणि तुम्हाला 1 रुपया लागणार नाहीये। यानी कि दुकानदार के अकाउंट में 4980 रुपये और ये चार्जेस ना 0.4% के 75,000 पेमेंट के ऊपर लगने वाले हैं ऑनलाइन पेमेंट अगर आपने की तो। और फिर 75,000 के ऊपर आप कितनी भी पेमेंट करो आपके चार्जेस बस 300 रुपये कटेंगे। तो बट इसमें नुकसान दुकानदार का ही है ना, क्योंकि अगर हमने 5000 की शॉपिंग की तो उसके अकाउंट में कितने जा रहे हैं 4980 रुपये, तो उसका 20 रुपये का नुकसान तो हो ही रहा है, तो खुद का नुकसान थोड़ी करवाएगा वो। तो इस वजह से क्या करेंगे आप, आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक तो आप कैश से पेमेंट करो या फिर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आपको 5020 रुपये पे करना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, कोई भी अपना नुकसान क्यों करवाना चाहेगा फुजूल में। सो कुछ ऐसा सिस्टम है भाई जो आजकल चल रहा है, तो सोचिएगा आपको पेमेंट ऑनलाइन करना है या फिर कैश में करना है। स्टे ट्यून्ड
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: मंडे से फ्राइडे तक हम सब एक रेस में भागते हैं। टाइम पे उठना है, ऑफिस जाना है, काम कंप्लीट करना है, डेडलाइन संभालनी है, और इन सब के बीच कभी कभी ना हम खुद को ही भूल जाते, होता है ना ऐसा, सभी के साथ होता है यार। लेकिन फिर आता है वो दिन जिसका हमें इंतजार होता है, दैट्स कॉल्ड सैटरडे। और एक ऐसा दिन जब लाइफ थोड़ी स्लो करने का मन करता है, ना किसी डेडलाइन की टेंशन, ना हर वक्त प्रोडक्टिव रहने का प्रेशर, कभी कभी ना तो बस अपनी फेवरेट चाय लेकर बालकनी में बैठ जाना भी जरूरी होता है, और कभी बिना किसी प्लान के म्यूजिक सुनना, कभी दोस्तों के साथ मिलना, कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और कभी कभी तो बस सो जाना। क्योंकि वीकेंड का मतलब सिर्फ बाहर जाना या पार्टी करना नहीं होता है, वीकेंड का मतलब है थोड़ा सा वक्त खुद के नाम करना है। तो आज क्या है, वही दिन है वीकेंड, यानी कि सैटरडे वाला दिन, मतलब मंडे की टेंशन मंडे को देखेंगे। आज थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा मुस्कुराओ और अपनी लाइफ को फील करो मेरी जान, बिकॉज समटाइम्स कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ करने जैसा होता है। तो ये बात को याद रखिएगा और सैटरडे खूबसूरत तरीके से गुजारिएगा, चाहे दिन हो या रात हो, बेहतरीन हो ही जाएगी आपकी। यही एक मेरी ख्वाहिश है कि आपका अच्छे से सैटरडे गुजरना चाहिए। बाकी ख्वाहिशें और भी दोगुनी करते हैं ब्यूटीफुल से गाने के साथ, वो काम मेरा है, मैं अभी प्ले करूंगा और आपका मूड सेट करूंगा। स्टे ट्यून्ड
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: लेट्स टॉक अबाउट 90s वाला दौर जिसको हम कभी भूल ही नहीं पाते। तो बात कुछ ऐसी है कि देखो 90s का जो सफर होता है ना, वो हर किसी को अपना सा लगता है। उसकी यादें हो, वो बचपन हो, वो मासूमियत हो, और 90s में जो कुछ हमने धिंगाना मस्ती की थी और जिस तरीके से हमने अपनी दोस्तों के साथ वक्त बिताया था, मोहब्बत की थी, लेटर लिखे थे, मतलब कलम से लेकर फोन तक का सफर 90s वाले बच्चों ने देखा है, और जो कि आज बड़े हो चुके हैं, जो मिलीनियर्स इस रूप में जिन्हें जाना जाता है। बट दिल से ना तो वो 90s की यादें तो कभी नहीं निकलती ना, चाहे फिर गाने हो, फिल्म्स हो, कोई एक्टर हो, कोई टीवी सीरियल हो, कोई मैगजीन हो, या बस सुकून के वो लम्हे हो। तो उन्हीं बातों को हम ताज़ा करते हैं अपने एक स्पेशल शो में, जो कि संडे को होता है सुबह ठीक 9 से 11, जिसका नाम है
1: नाइंटीज की बातें। याद आती हैं वो बातें।
0: जी हाँ, मैं ही लेकर आता हूँ वो शो। तो वो शो सुनना ना बोले। कब सुनोगे आप? हर संडे सुबह 9 से 11 बजे तक मॉर्निंग के टाइम पर। और हाँ, इसी के साथ 90s की आपकी भी क्या कुछ यादें थी, कुछ मोमेंट्स हो गए जो आपको हमेशा याद रहते हैं, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर। बाकी संडे सुबह ठीक 9 बजे 90s वाले दौर में आइएगा जरूर। मैं तो रहूंगा ही, बाकी मुस्कान की चमकान के साथ सुनते रहिए।
2: Only on MGM 90.8.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है MGM 90.8 FM।
1: साथ है तो बात है।

0: जी अदनान आपके साथ है इन द शो और शो में ना मैं आपको गिफ्ट जीतने का एक मौका देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेरे सवाल का जवाब देना पड़ता है। तो आज का सवाल ऐसा था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले सूरज निकलता है। तो इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज निकलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में सूरज निकलने का प्रोसेस शुरू होती है। तो इस सवाल का एकदम सही जवाब दिया है गिरीश काय ने। सो कांग्रेचुलेशन गिरीश काय जी, आज आप विनर बन चुके हो। आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। सो गिरीश जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, आज के विनर वो बने हैं। और बाकी तो दोस्तों सुनते रहिएगा आरजे अदनान के साथ।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM साथ है।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एंड 5, छत्रपति संभाजीनगर।

इश्क सोच के कीता की कीता दिल देके दिल लैण दी लालच करी भुलिया जे तूने प्यार भी लालच नाल कीता

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FM 90.8 FM।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूं साथ तेरे, मैं हूं साथ तेरे।
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: FGM 90.8 FM साथ है।

0: क्या?
1: तू तो पंडा हीरो निकला बत्रा, मान गई
0: प्रमोशन हो गया कैप्टन बन गया हूँ।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एंड फाइव, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: Kajal.
1: Wait. I think we should go that way.
0: ये तो खराब है.
1: ये मेरा lucky charm है और ये मुझे हमेशा right direction देता है. Sometimes in life, you just have to let it go. और उसी flow में सही मंजिल मिलती है.
0: मतलब तुम एक compass से अपनी जिंदगी decide करती हो.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: गणपति बाप्पा जब आते हैं ना तो खुशियों के साथ रोजगार भी लेकर आते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि गणपति बाप्पा का तो आगमन हो चुका है, फिलहाल हम गणेश उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर तरफ बस एक बात की चर्चाएं होती है और हर कोई कहता है, मैंने भी मेरे दोस्तों को कहा है कि यार भाई मोदक खाने मुझे, और मोदक तो हर कोई खिलाता है, प्रसाद होता है। एंड यू नो व्हाट, इस साल ना तो बाप्पा के मोदक की वजह से ना होममेड मोदक को बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और ऐसे जो होममेड मोदक बनाने वाले लेडीज है ना त्यांना एक रोजगार सुद्धा या मोदकामुळे मिळालेला आहे। आणि यावर्षी असं बघण्यात आलेलं आहे की सर्वात जास्त पसंती ही होममेड मोदकाची आहे। सो जो होममेड मोदक बनाते अपने घर से काम करते हैं लेडीज, तो उनको इस गणेश उत्सव एक बहुत अच्छा बिजनेस मिला है। उनके जो मोदक है बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तकरीबन 35 रुपए प्रति नग से ऐसे ये मोदक बिक रहे हैं, एक मोदक जो बड़े साइज में होता है और स्पेशली जो ओरिजिनल मोदक होता है ना उसके मैं बात कर रहा हूँ, उकड़ीसी मोदक। और इसी के साथ मार्केट में ना तो अलग अलग वैरायटी के मोदक आए हुए हैं, जैसे कि उकड़ी के मोदक तो हर किसी को पसंद है, इसी के साथ मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, डार्क चॉकलेट ऐसे फ्लेवर के भी मोदक मार्केट में दिखाई देते हैं। आणि यासोबतच यावर्षी ना तर थोडे नीचा मोदकांना सुद्धा खूप मागणी आहे। हे सर्व मोदक आहेत ते होममेड मोदक आहेत, सो इसलिए कहा ना कि गणपती बाप्पा जब आते हैं तो खुशियों के साथ रोजगार भी लेकर आते हैं। क्या बात है यार, अब इतनी मोदक की बात हो ही रही है तो मैं क्या कहता हूँ, क्या है ना, मैंने मोदक नहीं खाए अब तक, ओरिजिनल वाले जो उकड़ी चास्ता ना थे, आप मुझे खिला सकते हो मोदक? देखो मैं ऐसा खुद से नहीं मांग रहा हूँ लेकिन बस बता रहा हूँ कि मुझे भी मोदक खाना है, तो कब आऊँ मैं आपके घर, बताइए बताइए। बाकी तो सुनते रहिए आरजे अदनान के साथ।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।

0: असं म्हणतात की एकच डिपार्टमेंट आहे जे खूप इमानदारीने काम करते. आता विचार कराल की ते डिपार्टमेंट कोणतं, तर ते ट्रॅफिक वाला, मतलब वही डिपार्टमेंट जिनकी गाड़ी आती है और आपने अगर नो पार्किंग में गाड़ी लगाए तो बिंदास आपकी गाड़ी उठाकर लेकर जाती है, उसके बाद आपको फाइन वगैरह भरना पड़ता है. ये कुछ पूरी प्रोसेस है और इनका काम भाई साहब इतना फास्ट होता है ना, आपको लगता होगा कि भाई ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन यही तो असली गेम शुरू होता है भाई. और ऐसी बात सामने आई है अपने शहर में भी, क्योंकि जो लोग गाड़ी उठाते हैं ना, और ये करते क्या है, अगर आपकी गाड़ी उठाए ना, कहते हैं कि आपको 1,000 का फाइन भरना पड़ेगा, फिर आपकी गाड़ी छूटेगी. फिर बाद में शुरू होता है असली गेम, साइड में आते हैं और कहते हैं कि 250 रुपए दीजिए, 500 रुपए दीजिए, आपकी गाड़ी अभी मैं छोड़ देता हूँ. तो कुछ इस तरीके से पूरा गेम शुरू है. एंड आपको क्या लगता है कि यार ये चीज ऊपर वाले तक पता नहीं होगी क्या? पता सबको होता है, क्योंकि एक ऑफिसर बैठा होता है सामने, तो बात कुछ ऐसे कि इसमें से कट उसका भी निकलता ही होगा ना, तभी जाकर इतना सब कुछ सेटलमेंट हो रहा है. अब सेटलमेंट कैसे शुरू होती है? 500 रुपए से, बाकी फिर वो मोल भाव करके आपकी गाड़ी छूट ही जाती है. सो कौन कहता है कि भाई ईमानदारी से लोग काम करते हैं, सब कुछ फ्रॉड चल रहा है. और हाँ, इतनी नो पार्किंग में कार्रवाई करने की इनको इच्छा है ना, तो पहले शहर में पार्किंग की व्यवस्था बनाओ, उसके बाद फिर ऐसी कार्रवाई करो. तो मान लेते यार, पार्किंग होने के बावजूद भी लोग रास्तों पर गाड़ी खड़े करते हैं, तो पार्किंग नहीं है. और बाय द वे, नो पार्किंग से गाड़ी उठाने के लिए गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशन है. वो कौन से है पता है? बताऊंगा मैं आपको, लेकिन कुछ ही देर के बाद. तब तक के लिए आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है चेक कीजिएगा एंड सुनते रहिएगा.
1: Only on MGM 90.8.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

पार्किंग में अगर आपकी गाड़ी है तो देखते देखते आपकी गाड़ी सड़क से ट्रक में आ जाएगी। तो बात कुछ ऐसी कि ऐसा शहर में हो रहा है और ये जो काम करते हैं ना इतने ईमानदारी से काम करते हैं ऐसा हमें लगता है, कितने फास्ट काम करते हैं। नो पार्किंग में अगर आपकी गाड़ी है और गाड़ी उठाने वाला ट्रक आ गया है तो डायरेक्टली आपकी टू व्हीलर उठा नहीं सकता, उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। पहला रूल क्या है, अगर नो पार्किंग में आपकी गाड़ी है तो उसको उठाने से पहले वहां पर जो लोग काम करते हैं उसका प्रॉपर वीडियो शूट करना कंपलसरी है, और उससे भी पहले एक बार वार्निंग देना कंपलसरी है लाउड स्पीकर के जरिए कि इस एरिया में जो भी गाड़ियां खड़ी है नो पार्किंग में वो वहां से निकाल दीजिएगा वरना हम गाड़ी उठाकर लेकर जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट रूल है। और क्या होता है, अगर हम किसी काम में हो अपनी गाड़ी वहां जहां पार्क किए थे वहां पर दिखाई नहीं दी तो इंसान घबरा जाता है और उसे लगता है कि भाई मेरी गाड़ी महानगर पालिका वाले उठाकर ले गए या चोरी हो गई। तो इस वजह से सेकेंड रूल है, जिस जगह से आप गाड़ी उठा रहे हो वहां पर आपको लिखना चाहिए कि आपकी गाड़ी प्रशासन ने उठाई है, आप इस जगह से वो कलेक्ट कर सकते हो। बट ये रूल भी कोई फॉलो नहीं करता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और रेगुलेशन है लेकिन ये फॉलो कोई भी नहीं करता। बिंदास तो एक ट्रक आता है गाड़ी उठाकर लेकर जाता है। सो कुछ ऐसा पूरा गोलमाल है भाई, सब कुछ गोलमाल है, चल रहा है। खैर, बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एफएम।

0: यूपीआई पेमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं भाई, पता तो चल ही गया होगा। और तब से लेकर अब तक अलग अलग सवाल माइंड में है कि यार फिर अब हमने यूपीआई से पेमेंट की तो हमको चार्ज पे करना पड़ेगा, और कुछ भी हो जाए भाई अपन अपना पैसा एक्स्ट्रा क्यों देंगे, और बहुत सारे ऐसे मिथ्स थे और अलग अलग माइंड में सवाल आते हैं। तो भाई साहब देखो क्लियर बात बता दूँ, P2P एकदम फ्री रहेगा, यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन एकदम फ्री रहने वाला है। जैसे कि मैंने अगर मेरे किसी दोस्त को पैसे पे किया, चाहे फिर 500 रुपये हो, 1000 हो, 5000 हो, 10000 हो, तो फ्री में वो पैसा पे होने वाला है, उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ये हो गया पर्सन टू पर्सन। हाँ, अगर हमने यानी कि मैंने किसी दुकानदार को कोई पेमेंट किया, मर्चेंट को पेमेंट किया, यानी कि P2M पर्सन टू मर्चेंट, तब जाके वो चार्जेस लगने वाले हैं। तो ये बात क्लियर रखिएगा कि हमें पैसे पे नहीं करना है, उस शॉपकीपर को, उस मर्चेंट को फीस पे करना पड़ेगी। मजे तुम्हें कौन दिया दुकान जाऊन 500 पेमेंट करा किंवा 5000 करा, तुमची पेमेंट ही एकदम फ्री मध्ये होणार आहे, त्याच्यावर कोणते चार्जेस नाही आहे। तो सवाल ये भी होता है कि यार एक्जैक्टली चार्जेस कितने पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को, और अगर हमने ये सर्टन अमाउंट उनके अकाउंट में सेंड की तो उन तक कितना पहुंचेगा और कितना चार्ज कटेगा। तो यार वो कुछ ऐसा है, वो बताऊंगा मैं कैसा है, बट कुछ ही देर में। तब तक स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: यूपीआई पेमेंट में क्या कुछ चल रहा है ये हम सभी को पता है ही। So, देखो यार सिंपल है कि P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन पेमेंट अगर आपने की तो आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है, लेकिन पर्सन टू मर्चेंट यानी कि हमने किसी शॉपकीपर को अकाउंट में पैसे पे किए, कुछ वहाँ से सामान खरीदा, तब वो चार्जेस लगेंगे। और चार्ज कब लगेंगे? 2000 के ऊपर के शॉपिंग के ऊपर 0.4% चार्जेस ये पे करना पड़ेगा शॉपकीपर्स को। अब सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जर तुम्हें कोणत्या दुकानदाराला 5000 पेमेंट केलं तर त्या दुकानदाराला 0.4% म्हणजेच 20 रुपये चार्ज लागणार आहे आणि तुम्हाला 1 रुपया लागणार नाहीये। यानी कि दुकानदार के अकाउंट में 4980 रुपये और ये चार्जेस ना 0.4% के 75,000 पेमेंट के ऊपर लगने वाले हैं ऑनलाइन पेमेंट अगर आपने की तो। और फिर 75,000 के ऊपर आप कितनी भी पेमेंट करो आपके चार्जेस बस 300 रुपये कटेंगे। तो बट इसमें नुकसान दुकानदार का ही है ना, क्योंकि अगर हमने 5000 की शॉपिंग की तो उसके अकाउंट में कितने जा रहे हैं 4980 रुपये, तो उसका 20 रुपये का नुकसान तो हो ही रहा है, तो खुद का नुकसान थोड़ी करवाएगा वो। तो इस वजह से क्या करेंगे, अब आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक तो कैश से पेमेंट करो या फिर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो आपको 5020 रुपए पे करना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, कोई भी अपना नुकसान क्यों करवाना चाहेगा फुजूल में। सो कुछ ऐसा सिस्टम है भाई जो आजकल चल रहा है, तो सोचिएगा आपको पेमेंट ऑनलाइन करना है या फिर कैश में करना है। स्टे ट्यून्ड
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

मंडे से फ्राइडे तक हम सब एक रेस में भागते हैं। टाइम पे उठना है, ऑफिस जाना है, काम कंप्लीट करना है, डेडलाइन संभालनी है, और इन सब के बीच कभी कभी ना हम खुद को ही भूल जाते। होता है ना ऐसा? सभी के साथ होता है यार। लेकिन फिर आता है वो दिन जिसका हमें इंतजार

0: होता है दैट्स कॉल्ड सैटरडे, और एक ऐसा दिन जब लाइफ थोड़ी स्लो करने का मन करता है, ना किसी डेडलाइन की टेंशन, ना हर वक्त प्रोडक्टिव रहने का प्रेशर, कभी कभी ना तो बस अपनी फेवरेट चाय लेकर बालकनी में बैठ जाना भी ज़रूरी होता है, और कभी बिना किसी प्लान के म्यूजिक सुनना, कभी दोस्तों के साथ मिलना, कभी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और कभी कभी तो बस सो जाना, क्योंकि वीकेंड का मतलब सिर्फ बाहर जाना या पार्टी करना नहीं होता है, वीकेंड का मतलब है थोड़ा सा वक्त खुद के नाम करना है। तो आज क्या है, वही दिन है वीकेंड, यानी कि सैटरडे वाला दिन, मतलब मंडे की टेंशन मंडे को देखेंगे, आज थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा मुस्कुराओ और अपनी लाइफ को फील करो मेरी जान, बिकॉज समटाइम्स कुछ नहीं करना भी बहुत कुछ करने जैसा होता है, तो ये बात को याद रखिएगा और सैटरडे खूबसूरत तरीके से गुजारिएगा, चाहे दिन हो या रात हो, बेहतरीन हो ही जाएगी आपकी, यही एक मेरी ख्वाहिश है कि आपका अच्छे से सैटरडे गुजरना चाहिए, बाकी ख्वाहिशें और भी दोगुनी करते हैं ब्यूटीफुल से गाने के साथ, वो काम मेरा है, मैं अभी प्ले करूंगा और आपका मूड सेट करूंगा, स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एंड 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: टॉक अबाउट 90s वाला दौर जिसको हम कभी भूल ही नहीं पाते। तो बात कुछ ऐसी है कि देखो 90s का जो सफर होता है ना, वो हर किसी को अपना सा लगता है। उसकी यादें हो, वो बचपन हो, वो मासूमियत हो, और 90s में जो कुछ हमने धिंगाना मस्ती की थी और जिस तरीके से हमने अपनी दोस्तों के साथ वक्त बिताया था, मोहब्बत की थी, लेटर लिखे थे, मतलब कलम से लेकर फ़ोन तक का सफ़र 90s वाले बच्चों ने देखा है, और जो कि आज बड़े हो चुके, जो मिलीनियर्स इस रूप में जिन्हें जाना जाता है। बट दिल से ना तो वो 90s की यादें तो कभी नहीं निकलती ना, चाहे फिर गाने हो, फिल्म्स हो, कोई एक्टर हो, कोई टीवी सीरियल हो, कोई मैगजीन हो, या बस सुकून के वो लम्हे हो। तो उन्हीं बातों को हम ताज़ा करते हैं अपने एक स्पेशल शो में, जो कि संडे को होता है सुबह ठीक 9 से 11, जिसका नाम है
1: 90s की बातें। याद आती हैं वो बातें।
0: जी हाँ, मैं ही लेकर आता हूँ वो शो। तो वो शो सुनना ना बोले। कब सुनोगे आप? हर संडे सुबह 9 से 11 बजे तक मॉर्निंग के टाइम पर। और हाँ, इसी के साथ 90s की आपकी भी क्या कुछ यादें थी, कुछ मोमेंट्स होंगे जो आपको हमेशा याद रहते हैं, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर। बाकी संडे सुबह ठीक 9 बजे 90s वाले दौर में आइएगा जरूर। मैं तो रहूंगा ही, बाकी मुस्कान की चमकान के साथ सुनते रहिए।
2: Only on MGM 90.8 FM.

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM,
0: साथ है तो बात है।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

गुलों के साए से खेलो चाहे कली से प्यार करो।

بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے گلوں کے سائے سکھے

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार।

0: परफेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है FM 90.8 FM।